मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी। मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी। बाल पुने दे चावां वर्गी ते सजन दियां खुलियां बावां वर्गी। खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी। आओ इस दी शान वधाइए एदे सोले रल मिल गाइए। क्योंकि बोली अपनी ते सानू माण होना चाहिए। बंदा जदों बोले तां पछाण होना चाहिए। अपनी पछाण वाला दीवा ना बजा दिओ।

0: सांझा विरसा मीडिया ने आए ने सेकंड एनुअल पिकनिक
1: संडे 6 सितंबर 11 बजे तो 4 बजे एट बल्ले बल्ले फार्म।
0: अनलिमिटेड फन मस्ती ते अपने आंदा होएगा साथ, भंगड़ा गिद्दा गेम्स फूड स्टार्स मेहंदी सब कुछ रीजनेबल रेट्स ते।
1: तुसी अपनी डिशेस भी बना के ले आ सकते हो। पूरा पिकनिक वाला माहौल ते पंजाब वाली वाइब्स। आ जाओ फिर 6 सितंबर दिन एतवार सवेरे 11 बजे एट बल्ले बल्ले फार्म 13219 चिंकूजी रोड कैलेडन।
0: वधेरी जानकारी स्पॉन्सरशिप ले हरजीत जजुआ नु कॉल करो 647-835-5994।
2: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
3: कॉल करो जे एंड गैरी नू
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।

0: Brampton. Major intersection Steeles and Kennedy 90545 12600.
1: बिजनेस का माड़ा हाल होया पे, कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज,
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी ले तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200.
7: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.

0: नहीं नहीं गलत बात है, वो एक गलत भ्रम में रह रहा है कि जितनी उम्र गुजारेंगे तजर्बा उम्र से आता है और उतना वक्त गुजारना पड़ता है। दैट्स ऑल योर ऑनर।
1: जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।

0: यार इना इंश्योरेंसा ने ते तुहां कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानूं अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: यार मेरा तो डाटा ही मुक गया ते जेड़ा मैं प्लान दा पे कर रही हां वो तो बिल्कुल ही वेस्ट है
4: ओए तू स्टिल डाटा इश्यूज ना डील कर रही हां तेनु वैल्यू मोबाइल जाना चाहिदा मेनू बहुत वधिया प्लान मिल गया सीगा जेड़ा मेरे बजट च सी
3: सच्ची
4: हां यार वैल्यू मोबाइल ते कनाडा दे मेजर प्रोवाइडर्स दे फोन प्लान मिलदे ने ओथे मेनू मेरे बजट दे हिसाब नाल परफेक्ट प्लान मिल गया
5: सीजन ओवर पे करना बंद करो स्ट्रीम टॉक ते टेक्स्ट करो बिना स्ट्रेस तो विजिट करो valuemobile.ca या अपने नियरेस्ट वैल्यू मोबाइल लोकेशन ते जाओ साडे मोबाइल एक्सपर्ट्स तुहानू बिल्कुल परफेक्ट फोन ते प्लान देंगे जो कि तुहाडे लई बेस्ट होवे
3: ओ अच्छा मैं आज ही वैल्यू मोबाइल जाके आनी हां
4: हां हां मैं भी तेरे नाल ही चलदी हां मैं भी अपने फोन नू अपग्रेड कराना आ
5: Value Mobile, the right phone, the right plan, the right place.
6: ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮਾਦਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਮ ਬੰਸਰਾਜ ਹੰਸ
7: ਟੋਰਾਂਟੋ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੀਅਲਟਰ ਰਵ ਸਿੰਘ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ A to Z ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਐਂਡ ਰੀਅਲਟਰ ਹਰਪ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਸੈਂਸ

0: Friday, September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा तो मेरे नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा, वे आ जा तो मेरे नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 इयर्स एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704, 416-524-6704।
4: हैसल फ्री मूविंग के लिए HK Movers।
5: नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं आपका खुदा बख्श एंड आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू परफॉर्म एट माता जी की चौकी।
6: मान तू बताया मेरा दुख सारे टाल के।
5: ऑन 4th सितंबर एट एरोस द कन्वेंशन सेंटर। सो दिस ब्यूटीफुल डिवाइन इवनिंग ऑर्गेनाइज्ड बीइंग बाय नेहा सेठी, अमन एंड हरमन। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शाम म्यूजिक और भक्ति से भरी होगी। हम इस दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबने अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जितने भी आपके क्लोज है सबके साथ आना है। सो गाइज, सी यू ऑन 4th सितंबर।
7: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लेके आ रहे हो, ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लेके उन्होंने प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे। साड़े अप्रूवल फास्ट ने, कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है, ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा, ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते। तुसी मैनू कॉल करो, एदे लई नंबर है 416-524-3535, 416-524-3535 विद ए शाबरा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस।

0: भी दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन,
1: स्टार इमिग्रेशन,
0: कॉल 905-457-3131
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: रेव सिंह कैनेडियन जंपल साडा अपना रेल्टर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री काट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बाहर फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर देने। रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट राइटर रेव सिंह। रेव सिंह दी तिखी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचण अते खरीदण विच तुहाडी हेल्प कर सकती है। नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नूं फोन करो 6477409600 647-740-9600 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲਟਰ ਰੈਵ ਸਿੰਘ।
3: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
4: Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa.

गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाटला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होवेगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। 1 बजे वतनों दूर तुहाडे लई पेश कीता जाएगा। हुण तो लैके 2 बजे तक साडे स्टूडियो दे नंबर रहणगे 905-799-0999 799-0999।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।

0: ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
1: ਫॉर ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: study visa express entry canadian express entry spousal file parents pr super visa nanny work permit farmer investor ya self employed di file gal ki immigration di har problem da solution lain layi community de jane pehchane ate tajrubekar immigration consultant gary wirk nu milo
3: koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya hove immigration da koi vi masla hamesha yaad rakho ikko hi na ate ikko hi tha cic immigration hune hi call karo 416-456-6161
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसे तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381
4: ਨਾਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-456-3381 416-457-3381
7: ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ
8: Toronto, get ready. Punjabi Virsa Radio and Television. Realtor Rav Singh. Cellular Points. A to Z Kitchen Cabinet. And Realtor Harp Garewal present.